0: armónicas porque sabían de la situación del instrumento en la India. Escuchemos la pieza Kahra Mohabbat Wala, que hace parte de la película Kismat, grabada en 1968, interpretada en la armónica cromática por Ashok Bhandari.
1: कभी हसीन ने कभी सादगी ने लूटा है खड़े खड़े से मुझे जिंदगी ने लूटा है जहाँ भी दिए हैं नजरों ने दिल को फरेब इन गजरारी आँखों ने हमको लूटा है